ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
1: आज की रात दुआओं की, उम्मीदों की, मुलाकातों की, चांद रात मुबारक अपनों के साथ और अपने रेडियो फजा 97.1 FM और डैब के साथ दिलों को जोड़े खुशियां बखेरे।
2: उत्सव घर आनंदमय हार्ट वार्मिंग आनंद एकता।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड एप ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड एप।
1: रुक जाओ, ये सिर्फ चांद नहीं खुशियों का ऐलान है। चांद रात की हर धड़कन अब हमारे संग, रेडियो फजा 97.1 FM एंड एप, जहां ईद शुरू होती है

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
10: ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड एप, जहाँ हर पल है ईद का रंग।
11: मेहंदी लग गई, शॉपिंग कंप्लीट, तो फिर चांद रात की मस्ती शुरू करो। म्यूजिक, डेडिकेशंस और ईद वाइब्स नॉनस्टॉप, सिर्फ रेडियो फाजा 97.1 FM एंड डैब पर।

0: honoring tradition, sharing joy. Faza 97.1 FM wishes you a very happy Eid Mubarak.
1: चांद आ गया तो मुस्कुराहटें भी आ गई, मीठी सी मौसिकी, प्यार भरी बातें और फैमिली के साथ खास लम्हे। आज की रात सिर्फ खुशियों के नाम। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। रेडियो फजा 97.1 FM।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: Celebrate sacrifice, spread happiness. Eid Mubarak from Radio Fazza 97.1 FM.

0: चांद निकला, दुआएं कबूल हुई, अब बस खुशियों की बारी है। चांद रात की ये खूबसूरत शाम अपनों और हमारे संग रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैप पर।
1: चांद रात आई है।
2: बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: Celebrate Eid al-Adha with grace and gratitude. Good vibes, great blessings. Eid al-Adha Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.
1: तैयार हो जाएं एक ऐसे लम्हे के लिए जो दिल को छू ले. ये है रात, चांद रात, रोशनी, खुशियों.
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
3: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में. सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ. लाइव कवाली परफॉर्मेंस बाय उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक. बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ. डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250. बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026.
4: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है.
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ.
7: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। फजा 97.1 FM एंड ऐप के संग संग आपको ईद उल अज़हा मुबारक।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इस ईद जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज यही है। इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।

0: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
1: चांद रात आ चुकी है, वॉल्यूम हाई करो, मूड सेट करो, क्योंकि अब चलेगा नॉनस्टॉप ईद एंटरटेनमेंट। मस्ती, म्यूजिक और धमाका सिर्फ रेडियो फाजा 97.1 FM एंड डैब पर।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: It's commercial time.
1: रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के

0: वेट तो इतनी परेशानी है यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना,
1: जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
11: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजाना 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजाना 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।
12: खुशियों और मोहब्बतों से भरपूर चांद रात, इस चांद रात को बनाइए और भी खास रेडियो फजा 97.1 FM एंड डेप के साथ। हम आप चांद रात और आपके पैगामात।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।

0: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
1: आज की रात दुआओं की, उम्मीदों की, मुलाकातों की, चांद रात मुबारक। अपनों के साथ और अपने रेडियो फजा 97.1 FM और डैब के साथ दिलों को जोड़े खुशियां बखेरे।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिगम, NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
2: प्लानिंग अ वेडिंग, रिसेप्शन और स्पेशल सेलिब्रेशन? डिस्कवर एक्सेलसियर नवाब, नॉटिंगहम्स ब्रांड न्यू रेनोवेटेड बैंक्वेटिंग वेन्यू। A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned with modern kitchen facilities. A spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
4: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ। इस ईद बस एक ही नाम, फजा 97.1 FM एंड डैब।
5: रुक जाओ, ये सिर्फ चांद नहीं, खुशियों का ऐलान है। चांद रात की हर धड़कन अब हमारे संग, रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब, जहां ईद शुरू होती है।
6: उत्सवों का आनंदमय, हार्ट वार्मिंग आनंद एकता।

0: ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डैब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।
1: मेहंदी लग गई, शॉपिंग कंप्लीट, तो फिर चांद रात की मस्ती शुरू करो। म्यूजिक, डेडिकेशंस और ईद वाइब्स नॉनस्टॉप, सिर्फ रेडियो फाजा 97.1 FM एंड डैब पर।

0: honoring tradition, sharing joy. Faza 97.1 FM wishes you a very happy Eid Mubarak.
1: चांद आ गया तो मुस्कुराहटें भी आ गई, मीठी सी मौसिकी, प्यार भरी बातें और फैमिली के साथ खास लम्हे। आज की रात सिर्फ खुशियों के नाम। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। रेडियो फजा 97.1 FM

0: Together in faith and joy, Eid Alada Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.
1: चांद रात आई, खुशियां लाई, इन तमाम खुशियों को समेटने के लिए फजा 97.1 FM और उसकी टीम की जानिब से सभी समाजों को चांद रात मुबारक।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आएं। 26th of May 2026 शाम 6 से

0: We specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
4: ईद अलाद मुबारक। मे योर डेज बी फिल्ड विद पीस, जॉय एंड ब्लेसिंग्स। रेडियो फाजा 97.1 FM।

0: चांद निकला, दुआएं कबूल हुई, अब बस खुशियों की बारी है। चांद रात की ये खूबसूरत शाम अपनों और हमारे संग रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैप पर।
1: चांद रात आई है।
2: बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: Celebrate Eid al-Adha with grace and gratitude. Good vibes, great blessings. Eid al-Adha Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.
1: तैयार हो जाएं एक ऐसे लम्हे के लिए जो दिल को छू ले। ये है रात, चांद रात, रोशनी, खुशियों और दुआओं भरी खास रात। इस चांद रात पर आपके साथ रेडियो फजा 97.1 FM, जहां हर दुआ, हर नगमा, हर जज्बा होगा खास।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अज़हा मुबारक।

0: तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।
1: कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए फजा 97.1 FM के साथ।
2: ये है चांद रात का बिगेस्ट सेलिब्रेशन, म्यूजिक होगा लाउड, मस्ती होगी अनलिमिटेड और एंटरटेनमेंट होगा फुल पावर। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो फाजा 97.1 FM।

0: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।
1: हर तरफ रोशनियाँ, हर दिल में ईद का इंतजार और इस हसीन चांद रात का हम सफर रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब।
2: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।
3: खुशियों और मोहब्बतों से भरपूर चांद रात, इस चांद रात को बनाइए और भी खास रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब के साथ। हम आप चांद रात और आपके पैगामात।

0: Abbotsford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.
1: Attention,
2: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजाना 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियां। फजाना 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।
4: खुशियों और मोहब्बतों से भरपूर चांद रात, इस चांद रात को बनाइए और भी खास रेडियो फजा 97.1 FM एन डेप के साथ। हम आप चांद रात और आपके पैगामात।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
1: आज की रात दुआओं की, उम्मीदों की, मुलाकातों की, चांद रात मुबारक। अपनों के साथ और अपने रेडियो फजा 97.1 FM और डैब के साथ दिलों को जोड़े खुशियां बखेरे।

कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए फजा 97.1 FM के साथ। चांद मुस्कुरा रहा है, अम्मी की दुआएं, बच्चों की शरारतें और घर भर की रौनकें, इस चांद रात खुशियों का साथ बने हमारा रेडियो फजा 97.1 FM। ईद की शुरुआत प्यार के साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी, वाइब भी।
10: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा, जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड ऐप, जहाँ हर पल है ईद का रंग।
1: मेहंदी लग गई, शॉपिंग कंप्लीट, तो फिर चांद रात की मस्ती शुरू करो। म्यूजिक, डेडिकेशंस और ईद वाइब्स नॉनस्टॉप, सिर्फ रेडियो फाजा 97.1 FM एंड डैब पर।

0: honoring tradition, sharing joy. Fada 97.1 FM wishes you a very happy Eid Mubarak.
1: चांद आ गया तो मुस्कुराहटें भी आ गई, मीठी सी मौसिकी, प्यार भरी बातें और फैमिली के साथ खास लम्हे। आज की रात सिर्फ खुशियों के नाम। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। रेडियो फजा 97.1 FM

0: Together in faith and joy, Eid Alada Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.
1: चांद रात आई, खुशियां लाई, इन तमाम खुशियों को समेटने के लिए फजा 97.1 FM और उसकी टीम की जानिब से सभी समाजों को चांद रात मुबारक।

बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना, गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब पे सुनेंगे आप, जहां होगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: चांद निकला, दुआएं कबूल हुई, अब बस खुशियों की बारी है। चांद रात की ये खूबसूरत शाम अपनों और हमारे संग रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैप पर। चांद रात आई
1: है। बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैप का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: Eid al-Adha Mubarak, wishing you peace, prosperity, and endless blessings. Radio Faza 97.1 FM.

0: Celebrate Eid al-Adha with grace and gratitude. Good vibes, great blessings. Eid al-Adha Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.
1: तैयार हो जाएं एक ऐसे लम्हे के लिए जो दिल को छू ले। ये है रात, चांद रात, रोशनी, खुशियों और दुआओं भरी खास रात। इस चांद रात पर आपके साथ रेडियो फजा 97.1 FM, जहां हर दुआ, हर नगमा, हर जज्बा होगा हाँ।

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। फजा 97.1 FM एंड ऐप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

0: इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसी जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज यही है।
1: छोटे भाई यार, तुमसे ज्यादा ही थी तो हमने जमा कर ली।

0: It's commercial time. तू को जा
1: मन को जा। रूह को महका देने वाली एक यादगार शाम, लाइव कव्वाली परफॉर्मेंस, गेस्ट ऑफ ऑनर उस्ताद रफाकत अली खान एंड हमनवा ऑन स्पेशल इवेंट बकरा मुबारक 2026। इश्को सुरूर की महफिल कव्वाली नाइट 26 मई 2026 शाम 6 बजे से रात गए तक। तशरीफ लाना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। XLC Nawab, Lotus Road, Nottingham, NG51EL. For details, please contact 077-1529-779 or 07-552-538-250. UK's biggest multicultural Eid festival, Bakra Mubarak 2026.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods.

0: at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
1: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant.
2: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजाना 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजाना 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।
3: खुशियों और मोहब्बतों से भरपूर चांद रात, इस चांद रात को बनाइए और भी खास। रेडियो फजा 97.1 FM एंड डेप के साथ हम आप चांद रात और आपके पैगामात।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए फजा 97.1 FM के साथ। चांद मुस्कुरा रहा है, अम्मी की दुआएं, बच्चों की शरारतें और घर भर की रौनकें, इस चांद रात खुशियों का साथ बने हमारा रेडियो फजा 97.1 FM। ईद की शुरुआत प्यार के साथ।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे, आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैप ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड डैप।
1: रुक जाओ, ये सिर्फ चांद नहीं खुशियों का ऐलान है। चांद रात की हर धड़कन अब हमारे संग, रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब, जहां ईद शुरू होती है

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिगम, NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंगम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
2: प्लानिंग अ वेडिंग, रिसेप्शन और स्पेशल सेलिब्रेशन? डिस्कवर एक्सेलसियर नवाब, नॉटिंगहम्स ब्रांड न्यू रेनोवेटेड बैंक्वेटिंग वेन्यू। A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
4: ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।
5: मेहंदी लग गई, शॉपिंग कंप्लीट, तो फिर चांद रात की मस्ती शुरू करो। म्यूजिक, डेडिकेशंस और ईद वाइब्स नॉनस्टॉप, सिर्फ रेडियो फाजा 97.1 FM एंड डैब पर।

0: honoring tradition, sharing joy. Faza 97.1 FM wishes you a very happy Eid Mubarak.
1: चांद आ गया तो मुस्कुराहटें भी आ गई, मीठी सी मौसिकी, प्यार भरी बातें और फैमिली के साथ खास लम्हे। आज की रात सिर्फ खुशियों के नाम। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आए 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552 538250.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह

0: Together in faith and joy, Eid al-Adha Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.
1: चांद रात आई खुशियां लाई, इन तमाम खुशियों को समेटने के लिए फजा 97.1 FM और उसकी टीम की जानिब से सभी सवादों को चांद रात मुबारक।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना, गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब पे सुनेंगे आप जहां होंगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: चांद निकला, दुआएं कबूल हुई, अब बस खुशियों की बारी है। चांद रात की ये खूबसूरत शाम अपनों और हमारे संग रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैप पर।
1: चांद रात आई है।
2: बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसी जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
1: आज की रात दुआओं की, उम्मीदों की, मुलाकातों की, चांद रात मुबारक अपनों के साथ और अपने रेडियो फजा 97.1 FM और टैब के साथ दिलों को जोड़े खुशियां बखेरे।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियां बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा, जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड ऐप, जहाँ हर पल है ईद का रंग।
1: मेहंदी लग गई, शॉपिंग कंप्लीट, तो फिर चांद रात की मस्ती शुरू करो। म्यूजिक, डेडिकेशंस और ईद वाइब्स नॉनस्टॉप, सिर्फ रेडियो फाजा 97.1 FM एंड डैब पर।
2: The festival of sacrifice and devotion is here. Eid ul Adha Mubarak from all of us at Faza 97.1 FM and DAB.

0: honoring tradition, sharing joy. Faza 97.1 FM wishes you a very happy Eid Mubarak.
1: चांद आ गया तो मुस्कुराहटें भी आ गई, मीठी सी मौसिकी, प्यार भरी बातें और फैमिली के साथ खास लम्हे। आज की रात सिर्फ खुशियों के नाम। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। रेडियो फजा 97.1 FM

बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना, गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब पे सुनेंगे आप, जहां होगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: चांद निकला, दुआएं कबूल हुई, अब बस खुशियों की बारी है। चांद रात की ये खूबसूरत शाम अपनों और हमारे संग रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैप पर।
1: चांद रात आई है।
2: बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें

0: काम कीजिए फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।
1: उत्सव घर आनंदमय हार्ट वार्मिंग आनंद एकता।

0: Celebrate Eid al-Adha with grace and gratitude. Good vibes, great blessings. Eid al-Adha Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.
1: तैयार हो जाएं एक ऐसे लम्हे के लिए जो दिल को छू ले। ये है रात, चांद रात, रोशनी, खुशियों और दुआओं भरी खास रात। इस चांद रात पर आपके साथ रेडियो फजा 97.1 FM, जहां हर दुआ, हर नगमा, हर जज्बा होगा खास।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: यूके की सबसे बड़ी चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल आ रही है एक ग्रैंड अंदाज में। सेलिब्रेट करें ईद उल अधा फैमिली, फूड, शॉपिंग और जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ। लाइव कवाली परफॉर्मेंस पाए उस्ताद रफाकत अली खान 26 मई 2026 शाम 6 बजे से लेट नाइट तक। बकरा मुबारक 2026 ब्रिंगिंग ट्रेडिशन टू लाइफ। डिटेल्स या बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07715299779 या 07552538250। बकरा मुबारक चांद रात मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल 2026।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। फजा 97.1 FM एंड ऐप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

की सीध खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: नॉटिंगम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
1: चांद रात आ चुकी है, वॉल्यूम हाई करो, मूड सेट करो, क्योंकि अब चलेगा नॉनस्टॉप ईद एंटरटेनमेंट। मस्ती, म्यूजिक और धमाका सिर्फ रेडियो फाजा 97.1 FM एंड डैब पर।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
1: आज की रात दुआओं की, उम्मीदों की, मुलाकातों की, चांद रात मुबारक अपनों के साथ और अपने रेडियो फजा 97.1 FM और डैब के साथ दिलों को जोड़े खुशियां बखेरे।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे, आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड एप ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड एप।
1: रुक जाओ, ये सिर्फ चांद नहीं खुशियों का ऐलान है। चांद रात की हर धड़कन अब हमारे संग, रेडियो फजा 97.1 FM एंड एप, जहां ईद शुरू होती है

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: ईद उल अधा की खुशियों को ग्रैंड स्टाइल में सेलिब्रेट करें। ZK इवेंट्स और रेडियो फजा ला रहा है इस चांद रात को जबरदस्त इवेंट बकरा मुबारक 2026, एक यादगार चांद रात एक्सपीरियंस। 26th of May, 6 PM till late. सिर्फ शॉपिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट का धमाका। फूड स्टॉल्स, फैमिली फन, ईद वाइब्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। तो इस चांद रात मिलते हैं बकरा मुबारक 2026 में, एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नोटिंघम, NG5 1EL।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नोटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाहि मिन्ना व मिनकुम।
2: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center, at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
4: ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।
5: मेहंदी लग गई, शॉपिंग कंप्लीट, तो फिर चांद रात की मस्ती शुरू करो। म्यूजिक, डेडिकेशंस और ईद वाइब्स नॉनस्टॉप, सिर्फ रेडियो फाजा 97.1 FM एंड डैब पर।

0: honoring tradition, sharing joy. Faza 97.1 FM wishes you a very happy Eid Mubarak.
1: चांद आ गया तो मुस्कुराहटें भी आ गई, मीठी सी मौसिकी, प्यार भरी बातें और फैमिली के साथ खास लम्हे. आज की रात सिर्फ खुशियों के नाम. सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए. रेडियो फजा 97.1 FM.

0: Together in faith and joy, Eid al-Adha Mubarak from Radio Fasa 97.1 FM.
1: चांद रात आई खुशियां लाई, इन तमाम खुशियों को समेटने के लिए फजा 97.1 FM और उसकी टीम की जानिब से सभी समाजों को चांद रात मुबारक।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: चांद रात की शॉपिंग अब होगी और भी जबरदस्त। कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, ईद एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। बकरा मुबारक 2026 UK का बिगेस्ट मल्टी कल्चरल ईद फेस्टिवल। अपनी फैमिली के साथ जरूर आए 26th of May 2026 शाम 6 से रात गए तक। एक्सेलसियर नवाब, लोटस रोड, नॉटिंघम, NG5 1EL। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट 07715299779 और 07552-538250.
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440-36-3063 या 07421-077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
7: Eid al-Adha Mubarak. May your days be filled with peace, joy and blessings. Radio Faza 97.1 FM.

बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैप पे सुनेंगे आप जहां होगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैप।

0: चांद निकला, दुआएं कबूल हुई, अब बस खुशियों की बारी है। चांद रात की ये खूबसूरत शाम अपनों और हमारे संग रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैप पर।
1: चांद रात आई है।
2: बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-201-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, maths and science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यूनिटी सैक्रिफाइस सेलिब्रेशन ईद अल अधा मुबारक, ओनली ऑन रेडियो फाजा 97.1 FM।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: Celebrate Eid al-Adha with grace and gratitude. Good vibes, great blessings. Eid al-Adha Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.
2: तैयार हो जाएं एक ऐसे लम्हे के लिए जो दिल को छू ले। ये है रात, चांद रात, रोशनी, खुशियों और दुआओं भरी खास रात। इस चांद रात पर आपके साथ रेडियो फजा 97.1 FM, जहां हर दुआ, हर नगमा, हर जज्बा होगा खास।

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटे। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

जी हाँ, तमाम सगिन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समाज को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं तेरा मेरा बकरा साथ अपना रहेगा, ठीक है ठीक। 2 बजे तक सुबह प्रोग्राम में मजे मजे के ट्रैक जो है वो शामिल किए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आ रहे होंगे। लेकिन अभी जो है वो एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मेरे पास मौजूद है, बट अभी प्रोग्राम में जो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक खड़ा होने वाली है। लीजिए, एक बार मैं भी सलाम कर चुकी, अब ये भी सलाम करने आ गया, मतलब ये कोई तरीका हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम सुन लेते हैं। सो अभी के लिए इस ट्रैक को सुनिएगा और इसके उस पर रहेगी मेरा आपको एक छोटी कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

का। इसी हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।

0: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
1: आज की रात दुआओं की, उम्मीदों की, मुलाकातों की, चांद रात मुबारक अपनों के साथ और अपने रेडियो फजा 97.1 FM और डैब के साथ दिलों को जोड़े खुशियां बखेरे।

यार हो जाएगी नॉटिंघम। बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ। सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Food.

0: Estates, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, jo naam hai mayar ka.
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
3: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
3: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
3: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
4: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
3: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
4: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
3: टेस्ट भी वाइब भी।
4: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ। इस ईद बस एक ही नाम, फजा 97.1 FM एंड डैब।
3: रुक जाओ, ये सिर्फ चांद नहीं, खुशियों का ऐलान है। चांद रात की हर धड़कन अब हमारे संग, रेडियो फजा 97.1 FM एंड डैब, जहां ईद शुरू होती है

0: ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड एप, जहाँ हर पल है ईद का रंग।
1: मेहंदी लग गई, शॉपिंग कंप्लीट, तो फिर चांद रात की मस्ती शुरू करो। म्यूजिक, डेडिकेशंस और ईद वाइब्स नॉनस्टॉप, सिर्फ रेडियो फाजा 97.1 FM एंड डैब पर।

0: honoring tradition, sharing joy. Faza 97.1 FM wishes you a very happy Eid Mubarak.
1: चांद आ गया तो मुस्कुराहटें भी आ गई, मीठी सी मौसिकी, प्यार भरी बातें और फैमिली के साथ खास लम्हे. आज की रात सिर्फ खुशियों के नाम. सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए. रेडियो फजा 97.1 FM.

0: your family, Radio Fuzz 97.1 FM.
1: Together in faith and joy, Eid al-Adha Mubarak from Radio Fuzz 97.1 FM.
2: चांद रात आई खुशियां लाई, इन तमाम खुशियों को समेटने के लिए फजा 97.1 FM और उसकी टीम की जानिब से सभी समाजों को चांद रात मुबारक।

चांद निकला, दुआएं कबूल हुई, अब बस खुशियों की बारी है। चांद रात की ये खूबसूरत शाम अपनों और हमारे संग रेडियो फजा 9

0: पीलो, ईद मुबारक।
1: ईद का चांद मुस्काए ऐसे जैसे आसमां भी झूमे खुशी में।

0: Celebrate Eid al-Adha with grace and gratitude. Good vibes, great blessings. Eid al-Adha Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.
1: तैयार हो जाएं एक ऐसे लम्हे के लिए जो दिल को छू ले। ये है रात, चांद रात, रोशनी, खुशियों और दुआओं भरी खास रात। इस चांद रात पर आपके साथ रेडियो फजा 97.1 FM, जहां हर दुआ, हर नगमा, हर जज्बा होगा खास।

0: Eid al-Adha, may your heart be filled with happiness and your home with peace. Eid Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
8: इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटे फजा 97.1 FM एंड ऐप के संग संग। आपको ईद उल अजहा मुबारक।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसी जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

की सीध खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
1: चांद रात आ चुकी है, वॉल्यूम हाई करो, मूड सेट करो, क्योंकि अब चलेगा नॉनस्टॉप ईद एंटरटेनमेंट। मस्ती, म्यूजिक और धमाका सिर्फ रेडियो फाजा 97.1 FM एंड डैब पर।

ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजाना 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजाना 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रासिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are safe. We are playing
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: नॉटिंघम की ईद की
15: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजान 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजान 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।
16: इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इसी ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड डैब।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: टुगेदर इन फेथ एंड जॉय, ईद अल अदा मुबारक फ्रॉम रेडियो फाजा 97.1 FM।

बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना, गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब पे सुनेंगे आप, जहां होगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: ईद अल अधा, मे योर हार्ट बी फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड योर होम विद पीस। ईद मुबारक फ्रॉम रेडियो फाजा 97.1 FM।

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum. Today when we all come together, having fun, making beautiful memories. Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: कुर्बानी, मोहब्बत और इत्तेहाद के जज्बे के साथ ईद उल अज़हा मनाएं। रेडियो फिजा की जानिब से आपको ईद मुबारक।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसी जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

0: इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।
1: छोटे भाई यार, तुमसे ज्यादा ही थी तो हमने जमा कर ली।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

0: planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
1: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
1: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा, जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे, आप सबको ईद उल अधा मुबारक।
4: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।
3: इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इसी ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक। तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ। सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियां बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
7: कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए फजा 97.1 FM के साथ।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था,

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are playing. Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
0: ईद के रंग मोहब्बतों के संग, फजान 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजान 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

की सीध खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस सीध हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस सीध को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

यार हो जाइए नॉटिंगम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center, at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा, जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: टुगेदर इन फेथ एंड जॉय, ईद अल अदा मुबारक फ्रॉम रेडियो फाजा 97.1 FM।

0: Eid al-Adha Mubarak. May your days be filled with peace, joy, and blessings. Radio Faza 97.1 FM.
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना, गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैप पे सुनेंगे आप, जहां होगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैप।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: Celebrate Eid al-Adha with grace and gratitude. Good vibes, great blessings. Eid al-Adha Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अज़हा मुबारक।

इससे खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसी जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज यही है।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।
1: कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए। फजा 97.1 FM के साथ।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

यार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे, आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड एप ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड एप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
10: ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
7: Eid al-Adha. May your heart be filled with happiness and your home with peace. Eid Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। फजा 97

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसी जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

की सीध खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस सीध हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस सीध को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए। फजा 97.1 FM के साथ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: जब नियत हो साफ तो
16: ईद के रंग मोहब्बतों के संग, फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हों और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए। फजा 97.1 FM के साथ।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड डैब

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: सेलिब्रेट सैक्रिफाइस, स्प्रेड हैप्पीनेस। ईद मुबारक फ्रॉम रेडियो फाजा 97.1 FM।

ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

0: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।
1: उत्सवघर आनंदमय हार्ट वार्मिंग आनंद एकता।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 011-599-8484 या 077-021-0793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डेप ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ। इस ईद बस एक ही नाम, फजा 97.1 FM एंड डेप।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: Celebrate sacrifice, spread happiness. Eid Mubarak from Radio Fazza 97.1 FM.

Nevada blessings to you and your family. Radio Faza 97.1 FM.